0: सिन्हा ने राजू मैं राजू बसे प्रोफेसर राजू
1: एफएम नौ सिन्हा बुसे केनु राजू सने स्वादगी